0: Hello, Acharya listeners. Myself, Manjusha Katigar, Assistant Professor, Coordinator of BBI from NJ Acharya and DK Marathe College. Welcome on Acharya 90 FM on our special program of Union Budget 2026-27. Today we have an expert resource person with us from Acharya College only. He is a CA and Assistant Professor. Professor Mahesh Vaishya giving us a briefing about our budget, and he tells us how the Indian economy budget, how our budget is affecting our Indian economy, business and common person. So sir, tell me first of all, in simple language, what do you mean by budget?
1: Let me before start, I just want to ask a question. Madam, should we continue in English or it's okay if we go in Hindi? As well as English.
0: No, we can use both the language.
1: Okay, thank you.
0: Combination of
1: India. जो हमारे श्रोता है, listeners है, मैं चाहूंगा कि वो बहुत ही simplified way में हमारे budget को understand करें. And before going ahead with the budget, I just want to tell you कि budget आज के हमारे जो generations हैं, young generations हैं, वो budget को इतना serious consider नहीं करते हैं. वो सोचते हैं जैसे बाकी भाषण होते हैं parliament house में. एंड बाकी जैसे सरकार अपनी काम करती है, वैसे एक बजट का भी एक होता है सिनेरियो. तो मैं सभी अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बजट को उस नजरिए से ना देखें आप. बजट एक अलग पहलू है. जैसे हमारे घर में हमारे गार्जियंस, माता पिता, फैमिली अर्नर्स जो होते हैं, वो हर महीने का एक इनकम लाते हैं, और साइमल्टेनियसली हमारे घर के जो दूसरे गार्जियंस होते हैं वो उसका एक एक्सपेंस का रेशियो बनाते हैं कि इस महीने में हमको मेडिकल का ये खर्चा है, इस महीने में हमें टूर के लिए यहां जाना है तो उससे ये रिलेटेड खर्चे हैं, इस महीने में हमें बच्चों का फीस बनना है उससे ये खर्चे हैं. तो हम एक अपना स्ट्रीमलाइन करते हैं कि भाई हमारी आमदनी कितनी है और हमारे खर्च कितने हैं. जब भी किसी व्यक्ति के आमदनी से ज्यादा खर्च होंगे तो यहाँ पे एक बात खुलकर आती है कि आपको कहीं ना कहीं से वो एडिशनल इनकम को जनरेट करना होगा या फिर किसी से वो एडिशनल इनकम लेना होगा मांगकर. तो आप या तो बैंक के पास जाएंगे या अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे या किसी करीबी के पास जाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, आप मदद करिए. और अगर आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आप वहां सरप्लस होंगे, और जब आप सरप्लस में होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पैसे को किसी और अच्छी जगहों पर निवेश करेंगे. लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं, लोग गहने बनवाते हैं, या लोग कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं, या लोग भविष्य के लिए निवेश भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जैसे हम अपने घर में एक सिनेरियो रूपांतरित करते हैं कि हमारा इनकम का फ्लो क्या है और एक्सपेंस का फ्लो क्या है, सेम वही फ्लो को हम एक अपने पूरे भारत वर्ष के लिए, पूरे नेशन के लिए हम जब बनाते हैं तो उसको हम एक बजट का रूपांतरण देते हैं. तो ये बेसिक ओवरऑल जनरल सिनेरियो है बजटिंग का.
0: एज अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस साल का जो बजट हमारा है 26-27 का, उसका मेन तत्वज्ञ, उसके पीछे मेन तत्वज्ञान क्या है, जो बजट बना है उसके पीछे क्या मेन एम है?
1: आपका बहुत अच्छा प्रश्न है मैम. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा इसके बारे में कि देखिए, आज के जो जनरेशन है या अभी के जो सिनेरियो चल रही है, तो लोगों का ये सोच है कि भाई पब्लिक को क्या मिल रहा है बजट से, पब्लिक को आमदनी क्या हो रही है, पब्लिक को क्या इनकम्स आ रहे हैं, या बजट से क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है. तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आप उस सिनेरियो में ना देखें. बजट बेसिकली एक रेवेन्यू से रिलेटेड होता है और एक कैपिटल एक्सपेंस से होता है. तो जब रेवेन्यू की हम बात करते हैं, जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली सरकार ये देखती है कि आपके खर्चे जो मंथली बेसिस पे हो, डेली बेसिस पे हो, एनुअल बेसिस पे हो, वो इनकम इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो, वो रेवेन्यू बेसिस होगा. बट जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हम करें तो सरकार लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलती है, जहां पे 10 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स डाउन द लाइन, यहां से हम अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक भविष्य निवेश की तरफ चलते हैं. तो दोनों ही सेक्टर को पैरेलली गवर्नमेंट लेकर चलती है. अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें पिछले साल का जो बजट आया था वो काफी इंटरेस्टिंग बजट था लोगों के लिए, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में काफी बड़ा स्लैब रेट में राहत दिया लोगों को, 12 लाख रुपए तक के इनकम पे आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आपने नोटिस किया होगा कि अभी पिछले ही साल 2025 सितंबर मंथ में गवर्नमेंट ने जीएसटी में काफी रेट्स कट डाउन किए, तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू सेक्टर में ऑलरेडी काम कर दिया है। तो रेवेन्यू में उन्होंने इनकम के ऊपर भी आपका जोर दे दिया कि भाई आपके इनकम को हमने बढ़ा दिया, तो अब आपको टैक्स की कोई चिंता नहीं करनी है कि भाई मैं 5 लाख कमाऊंगा तो टैक्स कितना आएगा, मैं 8 लाख कमाऊंगा तो टैक्स कितना आएगा। तो अब आपको 12 लाख तक की लिमिट कर दी है गवर्नमेंट ने, तो आपको वहां पे एक चिंता खत्म हो गई। मेजोरिटी हमारी जो 60 से 65% जनता है जिसकी आमदनी 10 से 12 लाख के बीच में है या बिलो है, उन सभी जनताओं के लिए तो सरकार ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। प्लस बाकी हमारे जो बचे हुए लोग थे, या मैं कहूं 100% लोग थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने सितंबर मंथ में जो जीएसटी के रेट्स कट डाउन किए, इससे कंजम्पशन में काफी ग्रोथ हुआ है। क्योंकि जब रेट कम हुए हैं तो प्राइसेस नीचे आए हैं, कीमतें कम हुई हैं, कंजम्पशन बढ़ा है, तो रेवेन्यू पे ऑलरेडी सरकार ने फोकस किया था। इस बार का बजट पे सरकार की ये एम है कि कैपिटल पे फोकस किया जाए, और इसलिए आप देखेंगे इस बार का बजट नेशन पे किया गया है, ना कि लोगों पर। तो ये नेशन जो बजट है, ये नेशन बजट ऐसा है कि हमने यहां से 10 से 15 20 साल का निवेश का स्तर रखा है, जहां पे हम बड़े बड़े निवेश कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इंफ्रा कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी कर रहे हैं, डेटा सेंटर ओपन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम काफी बड़े पैमाने में बड़े विजन के साथ हम ग्लोबलाइजेशन पे उतर रहे हैं कि हम विश्व में सबसे बड़े ताकतवर नेशन के रूप में अगले 15 से 20 साल में हम आ सके, उस तरह से हमारा फोकस है।
0: आपने अभी अभी कहा, उसी बात को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि इस साल का बजट जो है, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल, इट इज फॉर द नेशन। तो मैं बोल रही हूँ कि हमारे अगर नेशन का बजट है, तो हमारा आज का ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें 4-5 सालों से, कि इंडिया इज अचीविंग द एक्सीलेंट ग्रोथ रेट। हमारा ग्रोथ रेट जो है वो राइजिंग पाथ पे दिख रहा है। आई एम द इकोनॉमिक्स टीचर, सो मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई हमारा ग्रोथ रेट अगर राइजिंग पाथ पे चल रहा है, तो उसको सस्टेन करने के लिए बजट ने क्या किया।
1: जी, उसे सस्टेन करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म विजन लेना होगा। आज अगर हम सोचेंगे कि हम इस साल के इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड हम लोगों को खुश कर दें कि भाई चलो इस साल और हमने आपकी आमदनी बढ़ा दी, इस साल और हमने आपको पैसे हाथ में दे दिए खर्च करने के लिए, रेट और कम कर दिए, तो इससे होगा क्या कि आप थोड़ा उस बात पे चलेंगे कि बस आपको कमाना है, खाना है और खर्च कर देना है, बजाय कि हम ये चाहते हैं कि सस्टेन हो। सस्टेन का मतलब हुआ कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है, हमें एक आगे विजन लेकर चलना है, क्योंकि सरकार की ऑलरेडी एक विजन है कि हमको बाय 2047 हमारे भारत को एक विकसित और डेवलप्ड नेशन के नाम से हमारा भारत जाना जाए, जो कि अभी भी हम उस मार्ग पे हैं कि हम डेवलपमेंट के रास्ते पे ही चल रहे हैं, और काफी सालों से हमारा विजन है कि हम कब डेवलप होंगे। हमारा जो जनरेशन है, हमने पढ़ाई के दौरान भी यही पढ़ा कि हम लोग डेवलपिंग नेशन है, और आज भी हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भी हम यही पढ़ रहे हैं कि हम डेवलपिंग नेशन है। तो कब वो सपना हमारा साकार होगा कि हम भी एक डेवलप नेशन बने, तो उसके लिए जो सस्टेनेबिलिटी है, उससे रिलेटेड इस बार के बजट में काफी कुछ सरकार ने किया है, उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं।

0: इज डूइंग परफॉर्मिंग वेरी वेल.
1: यस, तो ग्रोथ रेट तो सस्टेन हो रहा है ऐसे आप बोल रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट सस्टेन करने के लिए बजट ने इस बार बहुत कुछ किया हुआ है. तो ग्रोथ रेट की बात अगर आती है तो युवा वहां पे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता.
0: जी बिल्कुल,
1: बिकॉज ग्रोथ रेट युवाओं के ही कंधे पे चल रहा
0: जी,
1: है
0: जी, आज के भविष्य
1: तो,
0: है वो.
1: हाँ, तो मुझे जानना है इस बजट में युवाओं के लिए क्या किया है.
0: देखिए, मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आप युवाओं के सेक्टर के लिए बात करें तो आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है या एक उनके सामने प्रश्न है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का क्या. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आज गवर्नमेंट काफी बड़ा निवेश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे. जैसे कि गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग विथ साउथ साइड में, दे आर स्टार्टिंग विथ कॉरिडोर, जहां पे वो मिनरल्स जो हमारे ऐसे मिनरल्स है जो अभी तक इंडिया ने प्रॉपर एक्सप्लोर तो किया है बट प्रॉपर अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया. हमारे पास मिनरल्स हैं काफी मात्रा में है बट हम उसका यूज नहीं कर पा रहे, हम उसको जनधन तक पहुंचा नहीं पा रहे, जिसके कारण से वो मिनरल्स हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं. बाकी नेशंस यूज कर रहे हैं, वो अच्छा अर्न कर रहे हैं बट हम नहीं कर पा रहे. तो गवर्नमेंट इस बार कॉरिडोर पे फोकस करके उन रिसोर्सेस का यूज करेगी तो वहां एम्प्लॉयमेंट एक बढ़ेगा. दूसरा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे काम कर रही है, इंफ्रा पे काम कर रही है, जहां पे और भी विस्तार रूप से रोड्स है, रेल लाइन्स है बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जाहिर सी बात है. उसके अलावा डेटा सेंटर्स रिलेटेड गवर्नमेंट इस बार प्लान की है कि हमें, जैसे आज हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं या और भी बहुत सारे जो एप्स यूज करते हैं, ये सारे एप्स के जो डेटा सेंटर है दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर आउटसाइड इंडिया. और उस वजह से हमारे सामने एक चैलेंज ये है कि अगर कल को ये कंपनीज किसी कारण से, जैसे कि आपने अभी सुना होगा बीच में कि अमेरिका ने टैरिफ रेट बढ़ा दिया, किसी और कंट्री ने कुछ और कर दिया, तो हमारे ग्रोथ पे उसका असर आ जाता है. तो डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम अपने यहाँ पे डेटा सेंटर्स कंपनीज ओपन करें और जो डेटा आज बाहर मैनेज किए जा रहे हैं, बाहर के सर्वर में रखे जा रहे हैं, बाहर गांव के सर्वर में वो स्टोर किए जा रहे हैं, वो सारा स्टोरेज हमारे इंडिया में, तो वहां पे आपका जॉब बढ़ेगा. इसके अलावा मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत सारे प्रोडक्शंस गवर्नमेंट इंडिया स्टार्ट कर रही है, तो प्रोडक्शन लाइन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर्स में ग्रोथ आ रहे हैं. ये सारे सेक्टर्स जो बढ़ेंगे इसमें आने वाले भविष्य में आप पकड़ के चलिए कि यहां से करीब करीब 20 से 25 लाख एडिशनल जॉब क्रिएट हो रहे हैं.
1: ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यूथ के लिए तो बहुत ही अच्छा बजट ने ये दिया है ग्रोथ के, यूथ के ग्रोथ के लिए. अभी मैं जानना चाहती हूँ कि हमेशा जब बजट आता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस, रिफॉर्म, जिसे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में रिफॉर्म कहते हैं,
0: जी जी जी,
1: कि कुछ ना कुछ हमेशा गवर्नमेंट रिफॉर्म लाती है, तो इस बार कितने रिफॉर्म गवर्नमेंट ने इस बजट में लॉन्च किए हुए हैं और क्या है वो?
0: देखिए, जो मौजूदा सरकार है अगर आप देखें या इसके पिछले की भी जितनी सरकारें गई हैं, अगर आप इनका टोटल समावेश करें, टोटल एग्रीगेट करें, तो करीब करीब 350 के आसपास हमने रिफॉर्म्स किए हैं अब तक. और ये कई सारे रिफॉर्म्स है, आप इसमें बैंकिंग रिफॉर्म करिए, आप इसमें टैक्सेशंस में रिफॉर्म लीजिए, आप इसमें रेवेन्यू रिफॉर्म करिए. हमने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, लॉज हैं जिनको हमने एबॉलिश किया या उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किया, लेबर लॉ में अमेंडमेंट किया हमने, लोगों के लिए जीएसटी में जो सिंप्लीफिकेशंस लाए हैं या हमने इनकम टैक्स में जो कलेक्शंस किए, ये सारे रिफॉर्म्स हैं. तो ऐसे हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और ये रिफॉर्म्स बेसिकली क्या होता है, समय की मांग है. जब लॉ लिखा गया था उस समय जो दौर था वो दौर और आज के दौर में बहुत कलेक्शंस हैं. अगर आज भी आप कहेंगे कि भाई आप पेपर एंड पेन से लेकर कोई हिसाब किताब करें तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनीज. बट एक दौर था कि जब पेपर पेन से ही लोग हिसाब किताब करते थे और जर्नल बुक्स लिखते थे. बट आज तो हर चीज के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए. आप ये भी नहीं कह सकते कि चलिए मैं एक छोटे से किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूं, नहीं, क्योंकि आज मल्टीनेशनल सेक्टर में रियल टाइम पे आपको डेटा एंट्री होना है, रियल टाइम पे सारा काम, तो हर चीज के लिए रिफॉर्म करना ही पड़ेगा. जब तक रिफॉर्म नहीं होगा हम चेंजेस नहीं देख पाएंगे और चेंजेस नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो रिफॉर्म तो बहुत जरूरी है जी.
1: अभी मैं एक और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये भी देश के विकास के हिसाब से ये भी मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के साथ साथ आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे एमएसएमई के लिए, क्योंकि इस मतलब

0: रिसेंटली एमएसएमई का भी नाम बहुत आ रहा है कि हमें अगर ग्रोथ करना है तो वी हैव टू बुश अवर एमएसएमई, और गवर्नमेंट हर बजट में एमएसएमई को कुछ ना कुछ तो दे रही है, तो आप थोड़ा फोकस कर
1: एमएसएमई से। मैं आपको बताऊंगा, एमएसएमई से स्टार्ट अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें देखिए, इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम लोग सेमीकंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज होती है सेमीकंडक्टर, क्योंकि अगर आप देखें हमारे जो बाकी नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस करते हैं, क्योंकि इंडिया ऐसे ही अगर आप देखें तो इंडिया एक कंजम्पशन नेशन के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि आज भी हमारे भारत में 60% से ज्यादा कंजम्पशंस है एंड प्रोडक्शन में अभी भी इंडिया काफी नेशन से पीछे चल रही है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम प्रोडक्शन लाइन को ज्यादा स्ट्रीमलाइन करें, प्रोडक्शन पे जितना हो सके निवेश करें ताकि हमारे प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ सके। तो आज गवर्नमेंट एविएशन सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रही है, सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में गैजेट्स यूज होते हैं या जो चिपसेट्स यूज होते हैं उस पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, प्लस रेल में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। आज भारत रेल इम्पोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि रेल एक्सपोर्ट करने के प्रोसेस में आ गया है। भारत डिफेंस पे काफी खर्च कर रही है, डिफेंस के सेक्टर को मजबूत कर रही है, हम अपने खुद के स्वदेशी फायर फाइटर्स बना रहे हैं, हम अपने खुद के स्वदेशी आर्म्स एंड एम्युनिशंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइंस हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है कि हम अपने भारत को चारों तरफा सेफ गार्ड कर सकें, डिफेंस के सेक्टर में चारों तरफा हम अपने प्रोडक्शन लाइन को अच्छा कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू अगर किसी भी वाहतुक से अगर कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो बाय रेल, बाय रोड, बाय सी या बाय वाटर, हम तीनों ही तरफा से जल्द पहुंच सकें, डिलीवरी करवा सकें, सर्विस अच्छी कर सकें, इसके ऊपर फोकस है। तो हम प्रोडक्शन लाइन में ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, बट यस काम अभी भी बहुत करना बाकी है। आप ये नहीं कह सकते कि इस बजट से सारा काम होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बजट एक छोटा सा माध्यम है, एक छोटा सा पावली है जो हमने स्टेप अहेड किया है। धीरे धीरे ऐसे हम कई सारे बजट लाके धीरे धीरे हम आने वाले 10 साल में हम अपने भारत को एक श्रेष्ठ भारत होता हुआ देखेंगे।
0: ऐसा कहते हैं कि सर्विस सेक्टर इज अ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ फास्ट करना है तो सर्विस सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस बजट ने सर्विस सेक्टर को क्या क्या दिया है?
1: देखिए, मैं आपको इससे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जो अभी प्रेजेंट अगर आप देखें कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, प्रेजेंट जो टूरिज्म सेक्टर है, अगर आप देखें हमारे विदेशी जो मेहमान भारत घूमने आते हैं, सैलानी आते हैं घूमने, वो करीब करीब इस समय 1 करोड़ के आसपास टोटल पॉपुलेशन आती है। तो गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है कि इसको हम 10 करोड़ टूरिज्म पे कैसे पहुंचाए। फॉरेन टूरिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट जब हमारे नेशन में आते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी फॉरेन करेंसी, उनकी फॉरेन इकोनॉमी हमारी कंट्री में जम करती है, इंजेक्ट होती है, और क्योंकि उनकी करेंसी जब हमारी कंट्री में इंजेक्ट होती है तो हमारी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होता है, नंबर वन। नंबर टू, जब वो हमारी कंट्री में आते हैं तो यहाँ के जो सर्विस हैं वो सुधार होते हैं, क्योंकि उसमें आप हॉस्पिटैलिटी सर्विस को बढ़ावा देते हो, आप टूरिज्म को बढ़ावा देते हो, आप अपने ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देते हो, आप अपने लोगों में एक सिविक सेंस जागृत करते हो कि किसी से किस तरह से आप बर्ताव करें। एक अगर कोई महिला अगर फॉरेनर आई है तो उससे आप किस तरह से बात करें, एक कोई टूरिस्ट आया है जो फॉरेनर है उससे किस लैंग्वेज में, तो आपका लैंग्वेज प्रोग्रेस होगा, आपका पहनावा प्रोग्रेस होता है, आपके कल्चर्स डेवलप होते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर में एक एग्जांपल है कि ये एक तरह से छोटा सा ग्रोथ सर्विस में है। तो ऐसे कई सारे सर्विस सेक्टर्स आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी सर्विस में गवर्नमेंट फोकस कर रही है, टूरिज्म पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, एजुकेशन सर्विसेज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इस बार के बजट में करीब 1.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट रखा है कि हम एजुकेशन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करेंगे, और करीब करीब 1.5 लाख करोड़ पे रिसर्च और रिक्रूटमेंट और जो बाकी बच्चों से रिलेटेड उनके रिसर्च करना, उनके पढ़ाई लिखाई पे खर्च करना, उसके ऊपर काफी फोकस कर रही गवर्नमेंट। तो सर्विस में भी कहीं ना कहीं हमारा बढ़ावा हो रहा है।
0: अभी मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि सर्विस सेक्टर अगर ग्रो हो रहा है तो सर्विस सेक्टर में अगर टॉप में अगर कोई है आज माना जाता है तो वो है हमारा आईटी सेक्टर एंड डिजिटल सेक्टर। तो आईटी सेक्टर के लिए इस बजट ने क्या किया है?
1: जी मैं अभी आपको इसके पहली जस्ट फ्यू मिनट्स अगो मैंने आपको एक प्रश्न का जवाब दिया था कि आपको पता है कि जैसे कि हमारे जो आज आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं या जितने भी आज के यंग जनरेशन सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं, इन सबके जो डेटा सेंटर्स है ये इंडिया में नहीं है, दे आर ऑल इन फॉरेन। अब होता यह है कि अगर कल को किसी फॉरेन कंट्री के डेटा सेंटर ने या उस कंपनी ने कह दिया कि भाई कल से हम ये सर्विस के चार्जेस लेंगे या कल से हम इसके टैक्सेस बढ़ा रहे हैं या कल से ये सर्विसेज जो फ्री सर्विसेज थे ये पेड सर्विसेज हो जाएंगे, तो उस केस में हमारे बहुत सारी जनताओं को इफेक्ट हो जाएगा उसका, नंबर वन। नंबर टू, सर्विस सिक्योरिटी, सॉरी डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी कि भाई आपका जो डेटा है वो कितना सिक्योर्ड है। आज आप व्हाट्सएप पे धड़ल्ले से अपने बैंक अकाउंट डिटेल सेंड कर देते हो, आप व्हाट्सएप पे अपने पर्सनल फोटोज डाल देते हो, क्या गारंटी है कि ये फोटोज, ये जो डेटा आपने फीड किया है ये सिक्योर्ड है? क्यों मैं ये पर्स कह रहा हूं, क्योंकि ये जो डेटा जा रहे हैं ये डेटा हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय अदर पार्टीज विच आर नॉट इन इंडिया, और उनके ऊपर लॉ कानून इंडियन का नहीं लगेगा, उनके ऊपर सारे लॉ कानून विदेशी कानून लगेंगे, और अगर विदेशी कानून में उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई उनके लिए प्रोहिबिशंस नहीं है डेटा पे, तो वो तो मनमानी काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 years में हमारे इंडिया में डेटा हब हो, डेटा सेंटर हो, और ये सारे डेटा हम मैनेज करें जो हमारे इंडियंस के डेटा हो। तो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम है इससे रिलेटेड।
0: अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एमएसएमई की बातें हमने की, मैं अभी आप लोगों आपको एक थोड़ा अलग एंगल से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, वो है रिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट। तो पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट डू, क्योंकि हमारे श्रोते जो है वो एक आसान भाषा में जानने चाहते हैं कि व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि इस टैक्स में बहुत बदलाव हुआ है ऐसा हमने देखा है। तो पहले तो बताइए कि व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और बाद में बताइए कि उसमें क्या चेंजेस हुए।
1: मैडम आपने ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया है और A1 प्रश्न किया है मैं ये कहूंगा, क्योंकि काफी लोग इससे नाराज है कि भाई गवर्नमेंट ने एसटीटी रेट बढ़ा दिया। एसटीटी का मतलब हुआ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब क्या होता है एसटीटी, मैं थोड़ा सा पहले उसका ब्रीफ कर दूं। देखिए जब भी आप अपने शेयर्स को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड्स को किसी एक्सचेंज के थ्रू, हमारे भारत में दो एक्सचेंज सेंटर्स है, एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये मिडलमैन बन जाते हैं हमारे लिए, जिनके थ्रू बायर एंड सेलर अपनी सिक्योरिटी को एक्सचेंज करते हैं। अब जब हम एक्सचेंज करते हैं अपने सिक्योरिटीज को, तो यहां पे गवर्नमेंट एसटीटी का प्रोविजन लाती है, तो जो बायर होता है उसे भी एसटीटी देना होता है और जो सेलर होता है उसे भी एसटीटी देना होता है, जो कि अब तक 0.05% था। अब गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा स्लाइट इंक्रीज किया है, 0.15% पे लाया है। अब आपका कहना होगा कि गवर्नमेंट ने ये 0.10% जो बढ़ाया है इससे गवर्नमेंट को क्या ही आमदनी हो रही है और क्यों किया ऐसा गवर्नमेंट ने, तो मैं इस पे एक आपको ये तरह से विश्लेषण दूंगा कि इसमें गवर्नमेंट का मोटिव क्या है वो आप समझने के पक्ष में रहिएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि आज के जो जनरेशन है ना, आज की मैक्सिमम यंग क्राउड्स इजी मनी के पीछे दौड़ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स चलते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स होते हैं, यूट्यूब पे एड्स आते हैं, इवन हमारे टीवी चैनल्स पे एड आते हैं, कई मैचेस के दौरान भी एड आते हैं कि भाई ट्रेडिंग करिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, इंट्राडे ट्रेडर बन जाइए, या फिर आप फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करिए और लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए। अब जो हमारी यंग क्राउड है जिनके लिए संघर्ष करना एक बड़ा चैलेंज है, तो वो बच्चे सोचते हैं कि यार अगर मुझे महीने में 50,000 कमाना है, 1,00,000 कमाना है, तो मैं क्यों ना अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करूं और यहीं पे उसको चैनलाइज करके मैं इसी से पैसे कमा लूं। अब जिनके पास पैसे हैं वो तो कर सकते हैं, बट जिनके पास नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट से, बैंक से, रिश्तेदारों से, अपने घर के फैमिली मेंबर्स से पैसे लाकर इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचकर कि मैं इसमें कमाऊंगा। बिना प्रॉपर एनालिटिकल स्टडी, बिना प्रॉपर एनालाइज किए वो पैसे को लगा देते हैं, और बाद में होता ऐसे है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में उनके पैसे जिसमें उन्होंने निवेश किया है ये सोचकर कि ये मुझे इंक्रीमेंट देंगे या मुझे फायदे देंगे, कई बार उनको उसमें नुकसान होता है, और जब नुकसान सहते हैं वो तो उनको बहुत बड़ा फटका लगता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डिस्करेज सच काइंड ऑफ इजी अर्निंग मनी वेयर गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड एसटीटी। तो ये एक तरह का मैं कहूंगा ये डिस्करेज करने का पॉइंट है गवर्नमेंट का यंग जनरेशन को, खास करके हमारे, ताकि यंग जनरेशन इजी मनी की तरफ ना भागें। आपको इसके पहले पता होगा जो बजट के पहले आया था कि गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन गेमिंग्स है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लाया है, उसके लिए भी बिल पास किया है कि ऑनलाइन जो गेमिंग्स आज इंडिया में धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसमें काफी लोग अपने पैसे निवेश करते हैं ऑनलाइन गेम में पैसे कमाने के चक्कर में और वो पैसे गवा बैठते हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लाया। सेम रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट अब यहाँ पे एसटीटी के द्वारा लाने की कोशिश कर रही है। जी,
0: इसके आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश जो है वो हमेशा कहा जाता है जय जवान जय किसान।
1: जी,
0: तो ये हमारे बातें हमने की, और अगर किसानों के बारे में हमने बात नहीं की तो हमारा ये डिस्कशन।
1: जी, ये हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका ये नारा था जय जवान जय किसान। जी बोलिए,
0: किसानों के लिए क्या किया है बजट में?
1: देखिये मैम, किसानों के लिए गवर्नमेंट तत्पर काम कर रही है, और किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए, आज भी भारत में आपने देखा होगा कई बार फसलें होती हैं, अच्छी फसलें हो जाती हैं, बट कई बार हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन जो अनसर्टन हो गई हैं, अभी कभी भी आप देखते हैं रेन आ जाता है, कभी भी अचानक से पता चलता है कि भाई ठंड का मौसम हो रहा है और बहुत भीषण गर्मी हो रही है, या गर्मी का मौसम चल रहा है और अचानक से बारिश आ जा रही है। तो ऐसे मौसम में जब हम अपने अनाजों को खेतों में काट कर रखते हैं, या खेतों में अभी वो अनाज पक रहे हैं और उसमें अगर वर्षा हो जाए या किसी कारण से क्लाइमेट अनसर्टन हो जाए और चेंज हो जाए, तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट उस पर फोकस करके हमारे किसानों भाइयों के लिए हॉर्टिकल्चर बोलिए, फिश कल्चर बोलिए, या फिर फार्मिंग बोलिए, उसमें फोकस कर रही है, उसमें निवेश कर रही है गवर्नमेंट। प्लस करीब करीब इसमें, जहां तक मैंने बजट को इस बात का समझा है कि करीब करीब 4 से 4.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने इसमें निवेश किया है, प्लस इस पे काफी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है बाय वे ऑफ यूरिया, बाय वे ऑफ पेस्टिसाइड्स, बाय वे ऑफ वेरियस सीड्स, तो इसमें भी काफी बेनिफिट्स गवर्नमेंट पहुंचा रही है लोगों तक। और एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट अब मिडल मैनों के हाथों में न रखकर डायरेक्ट कंज्यूमर टू सप्लायर को एसोसिएट करने की कोशिश में है, जहां पे जो सप्लायर है, जो फार्मर है, वो डायरेक्ट एक्सेस कर सके अपने प्रोडक्ट को थ्रू ऑनलाइन बिजनेस आप कहिए, या डायरेक्ट अपने व्हीकल से वो मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, जिससे उसे उचित दाम मिले। आज भी आप देखते हैं कि जब सप्लाई चेन बढ़ती है अचानक से किसी भी प्रोडक्ट की, तो प्राइस कम्स डाउन, और बेचारे जो फार्मर्स होते हैं उनको उनके उचित दाम नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट अच्छा फोकस कर रही है, वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ रही है, फार्मिंग सेक्टर्स में एग्रीकल्चर को ग्रोथ कैसे करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, बिना फर्टिलिटी को हम फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सके, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा निवेश किया है। और जाहिर सी बात है आने वाले समय में हमारा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये अच्छा बूम करेगा, ग्रो करेगा। जी,
0: अभी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस बजट की एक नस पकड़ने वाली हूँ, और वो नस है फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि ये जो बजट पूरा हम लोग बनाते हैं उसके पीछे हमारा एम ही है कि हाउ वी आर कंट्रोल अवर डेफिसिट। तो इस साल के बजट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या है?
1: जी, मैं आपको कह दूं कि 2022-23-24 में हमारा फिस्कल डेफिसिट करीब 6.5% के आसपास था, जिसको गवर्नमेंट इस बार मिनिमाइज करते करते 4.3% के आसपास ला रही है। अभी फिजिकल डेफिसिट बहुत सी आम जनताओं को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, तो ये

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्जे शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों की गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है, और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आजादी के पहले की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आजादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तां। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी, और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कांधे पर बंदूक, लेकिन

की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने। सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरियां ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कंधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कंधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और 2 छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है, आनंद धीरे से बोला। अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती, तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे? अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने, अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ? अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना? अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहती। अशफाक ने माँ का हाथ पकड़ा,

अम्मी, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा? हम कैसे चैन से जी पाएंगे? हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे? हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे? हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे? अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी। उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है। अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

स्वागत है दोस्तों आपका। ब्रेक के बाद हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में जरूरतों का सामान भी ज्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियां जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आजादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आजादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, गुप्त मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखे गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा। अशफाक का खून खोल उठा, उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी। वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी। सब भागने लगे, अशफाक पीछे रह गया। एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी, तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद, शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो?
हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा। क्रांति में लोग कहानियां नहीं, लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी। तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया। नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका। तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून थूकते हुए हंस पड़ा। फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं, चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आज़ादी। और अब धीरे धीरे वो आज़ादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद अमित और अशफाक को सिवाय आज़ादी के दूसरा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आज़ादी मिल सके, युवाओं के दिल में आज़ादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक, आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा,

तभी अमित को भी गोली लगी, वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग, आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले आनंद, आनंद भाग। और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हेमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में 3 माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी। अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून एक आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे 3 दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे ये कहानी, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

श्रोताओं, आचार्य 90 FM पर मैं नीलू आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज इस मंच पर आकर अपनी कहानी आप सबके साथ साझा करने का अवसर पाकर मैं बेहद खुशी और आभार महसूस कर रही हूँ। शब्द मेरे लिए सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भावनाओं का एक सच्चा आईना है। कहते हैं जीवन रिश्तों से बनता है और रिश्ते मोह के उन अदृश्य धागों से जो हमें बांधते भी हैं और संभालते भी। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, मोह के धागे, वो केवल एक कहानी नहीं है बल्कि उन भावनाओं का ताना बाना है जो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं मौजूद है। कहानी मोह के धागे। सुनो, जो बेकार का सामान हो यही छोड़ देना। तुम्हें कबाड़ जोड़ने की बहुत आदत है, अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में भरते हुए शौर्य ने कहा। छटनी ही तो कर रही हूँ। सौम्या की आवाज भीगी हुई थी, आंखें बार बार छलक रही थी। पिछले वर्ष फ्लैट बुक करा दिया था जो अब मिल गया था, घर छोड़ना था अब। पर सौम्या का मन दरों दीवारों में, आंगन में, घर के हर कोने में अटका हुआ था। गहरी श्वास छोड़ते हुए उसने पुराना लोहे का संदूक खोला, दादी सास का। हर बार बरसात के बाद वह उसमें धूप लगाती, अखबार बिछा करीने से फिर सामान लगा देती। उसी में उसकी सास ने भी अपनी कुछ निधियां समेट कर रख दी थी। उसमें शौर्य के बचपन की निशानियां भी थी, नजरवट्टू, पहला धागा, छटी के कपड़े। सास की आवाज जैसे फिर उसके कानों में गूंज उठी। उसे दिखाते हुए बोली थी, पैदा होते ही 4 दिन बाद ही शौर्य को पीलिया हो गया था। तब दवा तो होती नहीं थी, झाड़फूंक ही होती थी। तेरे ददिया ससुर बालाजी से ये धागा लाए थे, बहू उनकी कृपा से ही बचा था मेरा बच्चा, कहकर चुप हो गई थी और माथे से लगाकर उसी रेशमी कपड़े में लपेटकर वापस रख दिया था। क्या करूं, कैसे फेंक दूं? नहीं नहीं, सौम्या के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे शौर्य को ही फेंक रही हो। मन कांप उठा। उसी के नीचे सौम्या ने अपने दोनों बच्चों के कपड़े भी रख दिए थे, परंतु उन कपड़ों को देने में उसकी आत्मा हिल जाती थी। उसने सब वापस रख दिया। ओह माँ, आप समझती क्यों नहीं, इतना सब नहीं जा सकता फ्लैट में। ये बड़े बड़े लोहे के कबाड़ कहाँ रखेंगे, इन्हें तो आप कबाड़ में बेच दीजिए। शुभम झुंझलाया,

पुराने सामान का करना क्या है, कबाड़ में भेज दो, दे दो किसी को। शुभम ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, फिर पापा से बोला, मैं फ्लैट की तरफ ही जा रहा हूँ, आपके और श्रेया के कमरे का फर्नीचर सेट करवा देता हूँ। ठीक है। शौर्य ने कपड़ों की अटैची बंद की और सौम्या से कहा, जो कपड़े अलमारी में टंगे रहे हैं उनको अलग बांध देना, मैं फैक्ट्री में मजदूरों को दे दूंगा। सौम्या चुप रही। क्या सच में अब इन चीजों की कोई जगह नहीं? क्या फ्लैट में रहने से इंसान भी बदल जाते हैं, या नवीनता के एहसास से सब कुछ बदल गया है? वह तो बहुत छांटने पर कुछ ही साड़ी निकाल कर काम वालों को दे पाई है, जबकि शुभम के कमरे में नौकर प्रतिदिन थैले भर भर कर ले जा रहे हैं। उसने तो पुराने सूटकेस तक दे दिए, उसमें ही हर चीज से जुड़ने का, चिपके रहने का एहसास क्यों है? उसमें ही मोह अधिक है या आज के बच्चों में जुड़ाव नहीं है? धीरे धीरे सामान बटने लगा, पड़ोसियों में, काम वालियों में, वह हर चीज में पीढ़ियों की छाप देख रही थी, और बाकी सब सिर्फ कबाड़, केवल कबाड़। सौम्या ने फिर संदूक खोला और उसने नजर बट्टू और छोटा झबला चुपचाप से अपने पर्स में रख लिया। ये कैसे छोड़ दूं? बच्चों की नहीं नहीं, बहुत मनोतियों से पाया है, ये तो रहेंगे मेरे साथ, मेरे जीते जी रहेंगे मेरे साथ। शौर्य ने पड़ोसी नीला भाभी को बुला लिया। भाभी देख लो, आपके मतलब की कोई चीज हो तो ले लो। नीला भाभी जल्दी जल्दी एक एक चीज पर को देखती और घर पहुंचाती। यह अचार के मर्तबान भी चले गए, आंगन की धूप भी, छत भी, अब फ्लैट में कहां अचार पड़ेगा? शुभम हंसा था। माँ कल सब कुछ तो बाजार में मिलता है। शुभम माँ की ना समझी पर खींच उठा। सौम्या फिर ख्यालों में खो गई। सास जी इसी आंगन में एक एक चीज मांगती, जोड़ती, फिर अचार अभियान शुरू होता। मिर्च मसाले तेल की गंध धोने पर भी हाथों से नहीं जाती थी। उस समय वह बहुत झुंझलाती भी थी। अम्मा जी आज ये सुबह से ही अचार का झमेला ले बैठी, मुझे तो आज बाजार जाना था। वह बड़बड़ाती पर सामान्य चेहरा ले अचार डनवाती कि दोनों काम हो जाएंगे। जब तक उसके हाथ पर चल रहे हैं तब तक तो वह कर ही रही है, पर फ्लैट में ये सब नहीं होगा, कहां धूप में रखेगी? छत भी तो नहीं है। ऊपर से कहते हैं, माँ नए साथ के साथ चलना सीखो, कब तक चिपकी रहोगी इन सब से? शुभम हंसा था। बहू ने भी व्यंग से होंठ टेढ़े कर लिए तो वह खिसिया गई, दो बूंद आंखों में भरी फिर सूख गई। पता नहीं तुम मोह कब छोड़ोगी? शौर्य ने उसके हाथ को सहलाते हुए प्यार से समझाया, तुम किसके लिए करना चाहती हो बताओ तो, तुम्हें परवाह नहीं है तो तुम क्यों अपनी जान खपाती हो? बच्चों को उनकी जिंदगी जीने दो, हम साये हैं, साये को साये में मिलाने की कोशिश मत करो, साया नहीं ढकेगा, खुद अपना वजूद खो जाएगा। ठीक कहते हैं। सौम्या चुप हो गई, शायद सच था, उसका गला भर भर आ गया, पर दिल मान कहां रहा था? उन सब चीजों पर न जाने कितनी पुश्तों के हाथों की छाप थी। वह धरोहर नहीं संभाल पाई। क्या वंशवेल ने अपनी आधार बदल दिया या जमीन बदल दी? नहीं, गंध की डोर क्या आगे बंधी रहेगी? आंखों से धार बहकर उसके पल्लू को भिगो गई। सब कुछ टूटता है, नए के लिए स्थान पुराने के हटने पर ही बनता है, पर निशान तो रह जाते हैं। यहाँ तो निशान भी मिट रहे हैं।
उसके जाने के बाद क्या रह जाएगा? कुछ साड़ी, ब्लाउज, जिन्हें नेहा श्रेया स्प्रह सी उठाकर काम करने वाली बाइयों को दे देगी और उसका वजूद मिट जाएगा। शौर्य दादी परदादी की बातें जब सुनाते हैं तो उनका चेहरा कितना प्रफुल्लित होता है। दादी के हाथ के तिल गुड़ के लड्डू, माँ के हाथ के मेथी के पराठे, क्या शौर्य कभी भूल पाए हैं? क्या वह भी अपने पोते पोतियों में मन में वह स्थान बना पाएगी? नहीं, उसका अस्तित्व तो ब्रेड बटर सैंडविच फास्ट फूड ने ही समेट दिया है। आखिरी बार जीने से उतरने में उसका दिल बैठा जा रहा था। सब उसे पागल न समझ बैठे, इसलिए सबसे छुपकर उसने घर की दीवारों को छुआ। हर कोना, हर याद, हर लम्हा। सीढ़ियों के पास पड़ी बेटी की पुरानी गुड़िया उठाई, जिसको बेटी ने रुई भर भर कर बनाया था, सोते जागते जिसे वह कभी छोड़ती नहीं थी, आज वह भी छूट रही थी। आंसू पोंछकर सौम्या नीचे उतर गई, घर छोड़कर एक फ्लैट में रह गई। मोह के धागे नाजुक सही, मोह के धागे नाजुक सही, पर टूटते नहीं, दिल से जुड़े रिश्ते यूं ही छूटते नहीं। कहानी खत्म हो जाए, कहानी खत्म हो जाए भले ही यहाँ, पर ये बंधन कभी खत्म होते नहीं। अंत में मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सुंदर मंच का, जिसने मुझे अपनी भावनाएं आप तक पहुंचाने का अवसर दिया। आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे सुना और अपना समय दिया। उम्मीद है मेरे शब्द आपके दिल को छू पाए होंगे। धन्यवाद।

आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मंडली कसे आहत सगळे, ऑल गुड ना? हमारे प्यारे ऑडियंस की तारीफ में पेश है कुछ लाइनें। अर्ज किया है, स्वाद के जायके की वादियों में हम आपका स्वागत करते हैं। इस महफिल में आपको न्योता देते हैं, आपकी मौजूदगी का हमें था बेसब्री से इंतजार। इस खुशी को हम दिल की गहराई से सजाते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि मैंगो मूड वाला फूड हम फिर से बनाएंगे और इस आम वाले सीजन को खास बनाने हम फिर से हाजिर हैं। कच्चा आम मींस कैरी से बनी रेसिपीज तो हमने बना ली, उसके बाद पके हुए आम से भी कई सारी मीठी और तीखी रेसिपीज हमने आपकी खिदमत में पेश की। आज हम एक मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। झटपट बनने वाली मैंगो रेसिपीज तो हमने सीख ली, अब सिस्टमैटिक तरीके वाली मैंगो रेसिपी को हम बनाते हैं। 10th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से होते हुए एक व्यंजन भारत आया, फिर भारतीय मसालों और सब्जियों के साथ इसने अपना रूप बदला। इस रेसिपी का नाम था वेज पुलाव। हरे मटर के दाने और साबुत मींस अखे गरम मसालों को इस्तेमाल करके बनता है मटर पुलाव। गाजर, आलू, गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियों को मिलाकर बनता है वेज पुलाव। सब्जियों के साथ साथ अगर इसमें पनीर के टुकड़े भी डाले तो तैयार होता है पनीर पुलाव। और सूखा मेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश के साथ पनीर और फलों के टुकड़े शाही अंदाज में पकाकर तैयार होता है नवरत्न पुलाव। वैसे क्या आप जानते हैं कि पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है? तो जनाब सुनिए, पुलाव बनाते समय चावल और सब्जियों को एक साथ पकाया जाता है, बिरयानी बनाते समय चावल और करी को अलग अलग पकाया जाता है, फिर उनकी परत मींस लेयर लगाकर दम दिया जाता है। यह है पुलाव और बिरयानी का इम्पोर्टेंट फर्क। अब हम आज की पहली रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है मैंगो पुलाव। मैंगो के सीजन को बाय बाय करने से पहले हम इसे बना ही लेते हैं। मैंगो पुलाव ये एक मीठी रेसिपी है जिसमें अल्फोंसो मैंगोज को कुछ गरम मसालों के साथ बासमती चावल को यूज करके बनाया जाता है। अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल एक कटोरी, अल्फोंसो मैंगो पल्प एक कटोरी, बारीक कटे हुए आम के टुकड़े एक कटोरी, शक्कर 4-5 चम्मच, नींबू का रस एक चम्मच, केसर के धागे 15-20, इलायची पाउडर 2 चुटकी, देसी घी लगभग आधा कटोरी। फिर हमें चाहिए लौंग 4 या 5, काजू बादाम के टुकड़े और किशमिश 4 चम्मच, दालचीनी 2 टुकड़े। दालचीनी के टुकड़ों के बजाय आप उसका पाउडर लें तो पुलाव में थोड़ा सा तीखापन आएगा। फिर हमें चाहिए सोप।

पिस्ता के स्लाइस 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इस रेसिपी को सुनने से पहले हम बासमती चावल को अच्छे से धो लेते हैं। चावल को धोकर लगभग आधे घंटे तक हम इसे पानी में सोक करते हैं। ऐसा करने से चावल के दाने पानी सोक कर फूल जाते हैं, जिससे वो पकते समय टूटेंगे नहीं। चावल के दानों की लंबाई भी बढ़ती है और उन्हें पकाते समय वो बिल्कुल खिले खिले और सॉफ्ट बन जाते हैं। लगभग 1 इंच ऊपर तक ताजे पानी में हमें बासमती चावल को सोक करना है। चलिए अब हम मैंगो पुलाव बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाले एक बर्तन में देसी घी को गर्म कीजिए। अब हमें इसमें तड़का लगाना है। घी गर्म होने के बाद उसमें लौंग डालिए, फिर दालचीनी के टुकड़े या पाउडर को भी डालिए। जैसे ही ये पक जाए, मींस अप्रोक्सीमेटली 10-12 सेकंड्स के बाद, इसमें 2 कटोरी पानी डालिए। थोड़े समय बाद उस पानी में उबाल आएगा, फिर उस उबलते पानी में थोड़ा सा नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसमें शक्कर भी डालिए, साथ ही कटे हुए आम के टुकड़े भी उसमें डालिए। इस स्वाद को एनहांस करने हम डालेंगे ताजे नींबू का रस। अब इस मिश्रण में ऐड कीजिए सोक्ड बासमती चावल। फिर क्या करना है? अरे भाई, फिर धीमी आंच पर इन चावलों को पकने दीजिए। ये चावल जब पक रहे होंगे तब इसकी खुशबू आपको खुश कर देगी। लगभग 15-20 मिनटों के बाद ये चावल पूरी तरह से पक जाएंगे। उसके बाद वो पके हुए चावल एक प्लेट में निकालिए। अब हमें इन चावलों को ठंडा करना है। जब तक ये चावल ठंडे हो रहे हैं, तब तक हमें गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारती सीमा। अब हमारे बासमती चावल हो गए हैं ठंडे और हम बढ़ रहे हैं अगली स्टेप की तरफ। तो भाई आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि एक कढ़ाई में पाव कटोरी घी लेना है, फिर गैस को ऑन करके हमें घी को गर्म करना है। अब इस गर्म घी में हम डालेंगे काजू, बादाम और किशमिश। इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करके साइड में रख दीजिए। आप गैस को बंद मत कीजिए। उस बचे हुए घी में फ्रेश मैंगो पल्प डालिए। धीमी आंच पर ये मैंगो पल्प 2-3 मिनटों तक अच्छे से पकाइए। ध्यान रहे ये जले नहीं। फिर उस पके हुए आमरस में डालिए पकाकर ठंडे किए हुए चावल। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें डालिए थोड़ी सी शक्कर और साथ ही आम के कुछ टुकड़े। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कीजिए। आखिर में केसर, इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कीजिए। बाद में इस कढ़ाई पर एक ढक्कन रख दीजिए। 1-2 मिनट के लिए मींस एक भाप आने तक इसे पकने दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। एक सर्विंग प्लेट में तैयार मैंगो पुलाव को निकालिए। उस गर्मा गर्म पुलाव की खुशबू को अपने मन में भी भर लीजिए। फिर सोक्ड और स्लाइस्ड पिस्ता के टुकड़ों से तैयार मैंगो पुलाव को डेकोरेट कीजिए। इस मैंगो पुलाव के साथ क्या खा सकते हैं? तो भाई इसके साथ आप खा सकते हैं आम का तीखा अचार या गोरी गोरी और क्रिस्पी कुरड़ई। और इसकी रंगत बढ़ाने के लिए आप एक ग्लास मट्ठा मींस मसाला छाछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हमारा मैंगो पुलाव हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने अगर आप हो रहे हैं बेकरार तो फिर इसे तुरंत बनाइए। अब ये मैंगो पुलाव बन जाए तब इसे अपनों के साथ मिल बांट कर खाएं। एक और खास बात, मैंगो पुलाव को सोफिस्टिकेटेड तरीका मीन्स काटा चम्मच से मत खाइए, इसे अपने हाथों से ही बिंदास खाइए। अपनी उंगलियों से मैंगो पुलाव का टेम्परेचर और टेक्सचर फील कीजिए, फिर एक नजाकत से उसका निवाला उठाइए। खाने से पहले मैंगो पुलाव का अरोमा मीन्स जायका फील कीजिए, बाद में एकदम तसल्ली के साथ आराम से उसे एंजॉय कीजिए। इतना लजीज खाना खाने के बाद उस खाना बनाने वाले का शुक्रिया भी अदा कीजिए। इस मैंगो पुलाव की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है जश्ने आम। फिलहाल चल रहा है एक मौसम, नाम है जिसका आम। स्वाद का जायका इस शो पर जश्न मनाएंगे खास। कभी बनाया मैंगो पराठा तो कभी मैंगो सालसा, इस आम ने हमारे किचन में सेलिब्रेट किया जलसा। आम तेरे कितने रूप, मैं वारी जाऊं तुझ पे, इतनी शानदार रेसिपीज बनाकर मैं तो इतराई खुद पे। नाम तो है इसका मैंगो या आम, स्वाद है एकदम अनोखा, तभी तो दिल में जगह इसकी खास। इस आम की रेसिपी ने मेरे दिल को इतना लुभाया, साइड में रख दी डाइटिंग और जी भर के आम खाया। मेरे भारत देश से जुड़ी ये आम बातें, दोस्ती होती पक्की खाना खाते खाते। आम का पुलाव बनाकर मनाया जश्ने आम, आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे लिए एकदम खास। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी की ओर। आम के अलावा एक और चीज है जिसे गर्मियों के सीजन में जी भर के खाया जाता है। बॉटनिकली ये एक फ्रूट है, लेकिन ये मिलता है सब्जी वाले के पास। सैंडविच, कचुम्बर और सलाद बनाते समय इसे यूज करते हैं। इसमें 95% से ज्यादा मात्रा में पानी होता है। अपने हाइड्रेटिंग गुणों और कुरकुरेपन के लिए ये फेमस है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से स्किन में चमक आती है, इसलिए अपनी ब्यूटी रेजिम में इसे जरूर शामिल कीजिए। जी हाँ, सही गेस किया आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खीरा मीन्स ककड़ी की। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं खीरे की स्मूदी मीन्स क्यूकम्बर स्मूदी। जब ककड़ी को किसी खास अंदाज में स्टाइलिश तरीके से पेश करना हो तब आप खीरे की स्मूदी मीन्स क्यूकम्बर स्मूदी को जरूर बनाइए। ये एक एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग और हेल्दी टाइप का ड्रिंक है, इसे आप लगभग 5 मिनट में झटपट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्यूकम्बर स्मूदी मतलब खीरा स्मूदी को बनाने की क्विक रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बड़ा सा एक खीरा मतलब काकड़ी, ताजा दही 1.5 कप, ताजा पुदीना 8 से 10 पत्ते, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, चीनी मीन्स शक्कर 2 चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं चुटकी भर काला नमक ले रही हूँ। अब हम क्यूकम्बर स्मूदी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले क्यूकम्बर मीन्स ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए, फिर पीलर से उसका छिलका हटाइए। छिलका हटाने के बाद उसके छोटे टुकड़े आप बनाइए। अब सुनिए एक इम्पोर्टेंट बात, उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आप पहले खाइए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो वो ककड़ी आप फेंक दें, उसे बिल्कुल यूज नहीं करना है। कड़वी ककड़ी को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर ककड़ी कड़वी नहीं है तो फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। फिर उस ककड़ी को बारीक टुकड़ों में काट। अब हमें मिक्सर में स्मूदी को बनाना है। इसके लिए मिक्सर के बड़े जार में खीरा
मींस ककड़ी के टुकड़े और पुदीने के पत्ते डालिए। इसे एक मिनट के लिए मिक्सर में घुमाइए। ऐसा करने से इसका फाइन पेस्ट बनेगा। अब इसमें दही, शक्कर और नींबू का रस भी डालिए, साथ ही चुटकी भर काला नमक भी ऐड कीजिए। अब मिक्सर के जार का ढक्कन लगाकर इसे पीस लीजिए। लगभग एक या दो मिनटों में ये मिश्रण एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसे पेश करने का टाइम हो गया है। सबसे पहले एक छोटी प्लेट में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी शक्कर, लगभग आधा या एक चम्मच नमक और शक्कर मिक्स करके रखिए। फिर कांच का एक लंबा ग्लास लीजिए। उस कांच के ग्लास के किनारों को थोड़ा सा पानी लगाइए। फिर उस ग्लास को उल्टा करके नमक और शक्कर की प्लेट पर रखिए। ऐसा करने से क्या होगा भाई? ऐसा करने से होगा ये कि जब आप क्यूकम्बर स्मूदी को सर्व करेंगे तब उसके किनारों पर क्रिस्टल्स जैसी चमक दिखेगी और क्यूकम्बर स्मूदी का प्रेजेंटेशन एक

प्रोफेशनल लुक वाला दिखेगा, है ना इंटरेस्टिंग बात। फिर उस ग्लास में एकदम आराम से क्यूकम्बर स्मूदी को डालिए, उसके ऊपर पुदीना के दो पत्ते भी रखिए। उसके बाद अपने मोबाइल कैमरा में क्यूकम्बर स्मूदी की छवि को कीजिए बंद, क्योंकि उसे टेस्ट करने के लिए लम्हे बचे हैं चंद। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओल्ड रेडियो। इस क्यूकम्बर स्मूदी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मखमली स्मूदी। गर्मी को भगाने के लिए बनाई क्यूकम्बर स्मूदी। इसका टेक्सचर ऐसा लगता जैसे खट्टा मीठा मखमली। ककड़ी में जब मिला ताजा ताजा दही, तब जाकर बना स्मूदी का टेक्सचर सही। इसे पौष्टिक बनाने डालो काला नमक, काला नमक खाकर सेहत जाएगी चमक। इसमें जब डालोगे नींबू की कुछ बूंदे, तब एंजॉय करोगी स्मूदी अपने नैनों को मूंदे। क्यूकम्बर की ये स्मूदी है हिंदुस्तानी और वेस्टर्न फ्यूजन। झटपट बनाओ इसे और दूर करो कंफ्यूजन। जी भर कर खाओ आप देसी खाना। उसके साथ सुनिए आप हमारा अगला गाना।

वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी खाद्य संस्कृति में तरह तरह के व्यंजन हैं। हमें तो बस बहाने ढूंढने हैं उनसे दोबारा मिलने के। अब आप क्यूकम्बर स्मूदी की

वाला जो सीजन चल रहा है उसमें हमने इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ली है। अगर आपके पास भी ऐसी ही सीजन स्पेशल इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर लिखिए। हमारे देश की खाद्य संस्कृति को निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाया मैंगो पुलाव। भिगोए हुए बासमती चावल, हापुस आम और कुछ चुनिंदा मसालों को यूज करके हमने मैंगो पुलाव इस यमी रेसिपी को एकदम शिद्दत से बनाया है कि नहीं। मैंगो सीजन को हर तरह से सेलिब्रेट करने की हमारी छोटी सी कोशिश एकदम कामयाब रही। उसके बाद हमने एक नॉन फायर रेसिपी बनाई। क्यूकम्बर स्मूदी नाम की इस मखमली रेसिपी ने गर्मी को थोड़ा कम करने की सफल कोशिश की। क्रिस्टल डेकोरेशन वाली और दही के साथ खीरा मींस ककड़ी का कॉम्बिनेशन तो गर्मी को मात देने एकदम सुपर कूल कॉम्बिनेशन साबित हुआ। अजी जनाब, बिना तले भी हम बहुत सी चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ही सकते हैं। खाने को डीप फ्राई करने की बजाय थोड़ा सा तेल लगाकर हम नॉन स्टिक पैन पर अपनी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल पकोड़े, जो बारिश के मौसम में सिग्नेचर डिश है, उसे कैसे बनाएं? तो जनाब जरा सुनिए। आप अप्पम पात्र को जानते हैं? हाँ, वही जिसमें अप्पम बनाते हैं, जिसमें इडली पात्र के जैसे कई सारे खांचे होते हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसके हर एक खांचे में लगभग आधा चम्मच तेल फैलाकर हम पकोड़े भी तलेंगे और बटाटा वड़ा भी तलेंगे। कब? कब मतलब झमाझम बारिश को शुरू तो होने दीजिए, मौसम को करवट तो लेने दीजिए, सुहाना सा सावन बरसने तो दीजिए। फिर हम हाले दिल को बयान भी करेंगे और साथ ही लजीज खाने का जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके पहले आप कीजिए एक काम, आचार्य 90 FM इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी खिदमत करने का एक मौका दीजिए। वैसे बारिश के सुहाने मौसम में वो कौन सी चीज है जिसे खाना आपको बेहद पसंद है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और मैं हूँ आपकी दोस्त आजय भारतीय सीमा। अर्ज किया है, मेरी जमीन पर कितने ही आसमान रहे, आचार्य 90 FM के ऑडियंस का हमेशा ही साथ रहे। फिर लेकर आऊंगी मैं कुछ रेसिपीज सुहानी, हर रेसिपी के साथ एक छोटी सी कहानी। मिलना है हमें हर सोमवार और शुक्रवार, जायके के सफर में दिल हुआ बेकरार, सजती है थाली और खाने में मसाले, आऊंगी मैं वापस अपना वादा निभाने, हमारी भारतीय संस्कृति में जायके का भंडार। ऑडियंस जी, जल्द ही मिलेंगे हम और लाएंगे स्वाद के जायके का दरबार। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ,
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ,
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ,
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ, वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मुझे जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो

0: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बहुत पसंद है
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियां बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सबसे जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सबके ऊपर जो कहानियां लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत पहुंची हुई है बहुत ज्यादा।
0: अच्छा,
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें, मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी,
1: वॉकिंग डिस्टेंस पर, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिंड ऑफ साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना, तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था।
0: अच्छा,
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा।
0: हाँ,
1: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
0: अच्छा,
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है। फिर वो लिखने लगी, धीरे धीरे मैं फिर उसे स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
0: अच्छा,
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
0: अच्छा,
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई।
0: हाँ,
1: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी की बातें, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी।
0: हाँ,
1: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
0: अच्छा,
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
0: अच्छा,
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
0: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहां पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसके हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह, क्या बात।
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है।
0: बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है। हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडंबना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है। ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे। बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे, हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान है।
0: वाह, यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार मनाते थे।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और खिलाना पिलाना वो सब मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था। तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात निकली है? हाँ।
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो और उसे मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे।
0: हाँ।
1: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग विलायती बहू कहने लगे थे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी ये उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इन्वाइट करते थे। मैं आपको वो किस्सों में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्य ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी।
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा। जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई उत्साहवर्धन
0: हाँ।
1: हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है। मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा
1: छपी
0: छपी हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटे छोटे उसमें निकल रही
0: हाँ।
1: थी एक जैसे ये है
0: आखर लगता हाँ।
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार ये कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
1: वो क्या था मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना
1: लॉ करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा
1: बस अब क्या और क्या करना है। मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा विदाउट पे करनी है तो
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो।
0: अच्छा।
1: वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी।
0: अच्छा।
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू?
0: हाँ।
1: अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी आप।
0: अच्छा।
1: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में मैं हूँ।
0: क्या बात है
1: मतलब मैं वो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध
0: हाँ।
1: का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उनसे
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी तो उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक
0: हाँ।
1: कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
0: अच्छा।
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
0: हाँ।
1: कि उसने 12th पास किया।
0: क्या बात है।
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई
0: हाँ।
1: सेट हो गई
0: जी।
1: तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से
0: हाँ।
1: स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: हाँ, काम करते थे
1: हाँ। तो जब इन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे ये इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी घर
0: हाँ।
1: में रह के क्या करोगी ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ। मैंने कहा जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश हैं
0: हाँ,
1: वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें
0: हाँ,
1: क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और
0: बराबर,
1: बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ
0: हाँ,
1: तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है, अभी हाँ, ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबाड़ा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए, वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा,
1: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
1: क्योंकि क्या है ना
0: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना पेशेंट्स जो है, मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन
1: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता है
0: जी।
1: फिर हम लोगों की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोगों को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। उस दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी
0: उनका दुख दर्द देख के,
1: नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे उन लोगों ने, समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़कर जाना होगा, यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
0: जी।
1: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पढ़ जाओगे क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी
0: राइट,
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, गिरे ना कहीं
0: जी।
1: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे
0: रहते हैं
1: हम लोग, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी
0: जी,
1: वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
0: अच्छा,
1: 35 शालाओं का निरीक्षण था। तो जो हम लोगों को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
0: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
1: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है
0: तो
1: उनको सेव करना, उनको गाइड करना है
0: राइट,
1: तो वो भी
0: करते हैं।
1: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, काफी सारा काम होता था
0: बराबर,
1: और आके बस आराम,
0: और अब ज्यादा
1: सोते थे मतलब बहुत रिलैक्स होता था कि हमने हमारे
0: कुछ तो किया
1: हुआ।
0: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं। ठीक है,
1: ठीक जी, थैंक यू।
0: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे
1: आप बताओ।
0: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतनी
1: जिंदगी
0: के बारे में सुनते हैं,
1: ये कर लेगी छोटा सा है
0: जी,
1: चलेगा
0: या
1: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
0: जी
1: जिंदगी। इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
0: जी। बिल्कुल।
1: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी
0: हाँ,
1: आज भी
0: आई है,
1: कल भी आई थी और आज भी आई है। किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
0: क्या बात।
1: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई हूँ। जिंदगी मैं तेरे लिए
0: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
1: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ। जिंदगी तेरे लिए
0: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ।

0: बरसों बाद ऊंट में निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

सुना दी। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त